पार, जूठे जूठा मुख वसै नित नित होए खुआर। सुचे इनाखिया बैन जे पिंडा तोए, सुचे से ही नानका, सुचे से ही नानका, जिन मन वसया।

जो जी होए सो उगवै मोका कै आवाओ। बीजै बिख मंगे अमृत में खोए न्याओ, महला दूजा नाल ए आनी दोस्ती कदे न आवे रास। जेहा जाने ते हो वरतै वेखो को निरजास, वस्तु अंदर वस मावै दूजी होवे पास। साहिब सेती हुक्म न चले कही बने अरदास, कूड़ कमाने कूड़ो होवै नानक सिफत विगास। महला दूजा नाल ए आने दोस्ती वडारू सोने हो, पानी अंदर ली।

अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई जिस डिठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौ निद आवै ताए सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद चक्कर चिहन अर बरन जात अर पात नहिं जेहे रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत केहे अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितो जिक हिज्जै कोट इंद्र इंद्रान साह सहान गणिज्जै त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिन कहत तो सर्व नाम कथय कवन कर्म नाम वर्णत सुमत प्रभ दाता दातार परयो जाच की किसरना मिलाए दान संतरेन जिह लग पवजल तरना बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावे देहो दर्श मन चाओ भगत एह मन ठहरावे बलियो चिराग अंधियार में सब कल उदरी एक नाम धर्म प्रगट सगल हर भवन में जन नानक गुरपार ब्रह्म गली असी चंगिया अचारी बुरिया मनो कुसुद्धा कालिया बाहर चिटविया रीसा करे तिनाड़िया जो सेवह दर खड़िया नाल खसमै रतिया मन सुख रलिया होंदै तान नितानिया रहे निमाननिया नानक जन्म सकार था जे तिनकै संग मिला होंदै तान नितानिया रहे निमाननिया नानक जन्म सकार था जे तिनकै संग मिला।
सुख टल गुर सेविया अहनिस सहज सुपाय दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसमदी नूर अरसों कुरसों चटिया तुद डिठ सच्चे पातशाह बल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह सिरशांद शाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावी साह सज्जन सच्चा पातशाह सिरशांद शाह जिस पास बैठिया

तेरा मर्तबा रंग परंग अनेक न जापन करतबा जिया अंदर जियो सबकी जान ला सब किस तेरे वास तेरा घर पला तेरे घर नंद बधाई तुद कर मान महत्ता तेज अपना आप जर।

चित आवन का सतकाल सर्व सुख को भी जहां जहां खालसा जी सतगुरु तहां तहां रचे आरे आयत नेक देव फत हे बिरद की पैद पंथ की जीत श्री

0: पौड़ी बड़ी वड़ा पार तेरा मर्तबा रंग परंग नेक ना जापन करतबा जिया अंदर जियो सब किछ जान ला सबके तेरे वास तेरा घर पला तेरा घर आनंद वधाए तुत घर माण महता तेज अपना आप जार सर्ब कला भरपूर देस है जगता नानक दासन दा तुद आगे बिनवता
1: श्लोक पवन गुरु पानी पिता माता तृत महत दिवसे रात दुई दाई दाया खेले सगले जगत चंगियाँ बुरियाँ

0: अंत लय छड़ाया।
1: श्लोक महला पहला। दुख दारू सुख रोग पया जा सुख ताम न होई। तू करता करना मैं नाही जा हाँ करी न हो। बलहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लखिया रहा। जात मह जोत जोत मह जाता अगल कला भरपूर रहा। तू सच्चा साहेब सिफत सवाल्यों जिन कीती सो पार पिया। कहो नानक करते किया बाता जो किश करना सो कर हया।
0: सोद राग आसा महला पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

शरण परे की राखहु शर्मा। एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह पातशाही दसवें कबेओ बाच बेनती चाओ पाई। हमरी करो हाथ दे रक्षा पूरन होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सवै तुम कावहु आप हाथ दे मोहे बचावहु। सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिखियो सवै करतारा। मोर अच्छा निज कर दे करिया सब बैरन का आवाज संगरिया। पूरन होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर ना ते आऊं जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिखियो हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उबरिया मरन काल का त्रास निवरिया। हु जो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुज जू करियो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बप तरा काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विसन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो देव दैंत जच्छन उपजायो। आद अंत एकै अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी। सेवकन को शिव गुण सुख दियो सत्रन को पल मोह बद कियो। काट काट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर असथूला सब पार कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाना है काट काट के पट पट की जाना है। जब उद करख करा करतारा प्रजा तरत तब देह अपारा। जब आकर्ख कर तुहु कबहू तुम मैं मिलत देह तर सबहू। जेते बदन सृष्ट सब तारै आप आपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड उचारत भेदा जाको भेव न पावत बिदा। ताकौ कर पाहन अनुमानत महामूड काछ भेद न जानत।
महादेव को कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप आपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तुहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप सरूपा, रंक पयो राव कही पूपा। अंडज जेरज सेत जकीनी, ओत पोज खान बहुर राच दीनी। कहूं फूल राजा हुए बैठा, कहूं सिमट पयो शंकर इकैठा। सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं पव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख्य उबार असिख्य संगरो। दुष्ट जिते उठवात उत्पाता, तुम करो सिख्य उबार असिख्य संगरो। दोस्त।

है रक्षा हुए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे निहार हो ताके ताप तनक मह हर हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट छा छुए सकै न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फासते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दुख ते रहा।

से पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया पर पूरे बेनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया पर पूरे बेनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे मुंदावणी महला पंजवा थाल विच तीन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबस आधारो जे को खावै जे को पुंचै तिसका होए उदारो एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख और तारो तम संसार चरण लग तरिया सब नानक ब्रह्म पसारो सलोक महला पंजवा।

वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतह। बोलो जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतह। श्री भगवती दी सहाय, वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवी प्रथम भगवती समरक गुरु नानक लई त्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास राम दास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिटै सब दुख जाय। तेग बहादुर समरै कार नौ निद आवै ताय। सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई हुए सहाय दस

गुरु बोलो जे प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। चित आवन का सदका सर्ब सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रचिया रियायत देख तेग फतहे बिरद की पैज पंथ की जीता श्री साहेब जी सहाय। खालसे जी के बोल बल्ले बोलो जी वाहे गुरु।

वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दातार जिया श्री ननकाना साहेब अते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है।

लेखा छोड़ अलेखा छूट है, हम निर्गुण लेहो उबारी। सद वख सिंद सदा मेहरवाना, सबना दे अदारी। नानक दास संत पाछै परयो, राख ले हो एह बारी। हाँ आया दूर हूँ चल कै, मैं तकी तौ शरणाए जियो। मैं आसा रखी चित मह, मेरा सब दुख गवाए जियो। एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखहु सरनाई। अंदर सच्चा नेहु लाया प्रीतम आपना, तन मन होए निहाल। जा गुर देखा सामने, सो कहो टल गुर सेविया। अहनिस सहज सुभाय, दर्शन परसया गुरु का। जन्म मरण दुख जाय, हुआ सिफत खसम दी। नूर अरसहो कुरसहो चटिया, तुद डिठे सच्चे पाते सा। माल जन्म जन्म दी कटिया, सज्जन सच्चा पाते साहु। सिर सहां दैसा जिस पास बैठया सोहिया, सबना दावे साहु। सज्जन सच्चा पाते साहु, सिर सहां जिस पास बैठया सोहिया, सबना दा वेसा हो। सत नाम

हम आव गुण परे एक गुण नाही, अमृत षाड बिखै बिख खाई। माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एके उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई। सो कहो टल गुर सेवी, एहन सुसहज सुभाय। दर्शन परसे गुरु के, जन्म मरण दुख जाय। होवे सिफत खसाम दी, नूर अरसों कुरसों चटी। तुद डिठे सचे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी। सजन सचा पातशाह, सिर सांदे जिस पास बैठिया सोही है। सवना दाविसाह, सजन सचा पातशाह, सिर सांदे जिस पास बैठिया सोही है। सवना दाविसाह। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, तनासरी महला पांजवा। जिस को बिसरे प्राण पत दाता, सोई गन हो अपागा। चरण कमल जाका मन रागेओ, अमै सरोवर पागा। जिस को बिसरे प्राण पत दाता, सोई गन हो अपागा। चरण कमल जाका मन रागेओ, अमै सरोवर पागा। तेरा जन राम नाम रंग जागा, आलस शीज गया सब तन ते, प्रीतम स्यों मन लागा। रहाओ जह जह पेखो तह नारायण, सगल कटा मह तागा। नाम उदक पीवत जन नानक, त्यागे सब अनुरागा। जह जह पेखो तह नारायण, सगल कटा मह तागा। नाम उदक पीवत जन नानक, त्यागे सब अनुरागा।
जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्म, हस्त काया रखिया परमेश्वर है, आत्म रखिया गोपाल स्वामी, तन चरण रखिया जगदीश्वर है, सर्व रखिया गुरदयाल है, पै दुख विनाशन है, भगत वत्सल अनाथ नाथे, शरण नानक पुरख अचुत है। बिलावल महला पंजवा, ताती वाव न लगई पार ब्रह्म शरणाई, चौ गिरद हमारे रामकार, दुख लगे न पाई, सतगुर पूरा भेटिया जिन बणत बनाई, राम नाम उपद दिया एका लिवलाई रहाओ, राख लिए तिन रखन हार, सब ब्याद मटाई, कोह नानक किरपा भई, प्रभ भए सहाई। सोहला राग गौड़ी दीपकी महला पहला, एको अंकार सतगुर प्रसाद, जय कर कीरत आखिए करते का होए विचारो, तित कर गाव हो सोहला शिव रिहो सिरजनहारो, तुम गाव हो मेरे निरभौ का सोहला, ओम बारी जित सोहलै सदा सुख होए रहाओ, नित नित जी अड़े संभालियन देखेगा देवनहार, तेरे दाने कीमत ना पवै तिस दाते कवन सुमार, संबत साहा लिखिया मिल कर पाव हो तेल, देहो सज्जन आसी सड़िया ज्यों होवै साहिब स्यों मेल, घर घर एहो पाहुचा सदड़े नित पवन, सदन हरा सिमरिया नानक से देह आवन, राग आसा महला पहला, शे घर शे गुर शे उपदेश, गुर गुर एको वेस अनेक, बाबा जय कर कर ते कीरत होए, सो घर राख बड़ाई तोए रहाओ, बेसोए जसया घड़िया पहरा थिती वारी माहो होआ, सूरज एको रुत अनेक, नानक करते के ते वेस, राग तनासरी महला पहला, गगन में थाल रब चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप माल्यान लो पवन चबरो करे, सगल बनराए फूलंत ज्योति, कैसी आरती होए भाव खंडना तेरी आरती, अनहता शब्द वा जंत फेरी रहाओ, सहसताव नैन नन नैन है तोहे को, सहस मूरत नना एक तोही, सहस पद बिमल नन एक पद, गंध बिन सहसताव गंध इव चलत मोही, सब महन जोत जोत है सोए, तिस दै चानन सब मह चानन होए, गुर साखी जोत प्रगट होए, जो तिस भावै सो आरती होए, हर चरण कबल मकरंद लोभत मनो, आन दिनो मोहे आही प्यास, कृपा जल देह नानक सारंग कौ, होए जाते तेरा नाए वासा, राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा, काम क्रोध नगर बह भरिया मिल साधु खंडल खंडा हे, पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडा हे, कर साधु अंजलि पुन बड़ा हे, कर डंडौत पुन बड़ा हे रहाओ, साकत हर रस साध न जानिया तिन अंतर हो मैं कंडा हे, ज्यों ज्यों चले चुभे दुख पाव है, जम काल सह है सिर डंडा हे, हर जन हर हर नाम समाणे दुख जन्म मरण पव खंडा हे, अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा हे,
ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖ ਵੱਡ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਟੇਕ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖ ਮੰਡਾ ਹੈ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਵੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਵੇਲਾ, ਈਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ, ਆਗੇ ਵਸਨ ਸੁਹੇਲਾ। ਔਦ ਘਟੈ ਦਿਨ ਸੁਰੈ ਨਾਰੇ, ਮਨ ਗੁਰਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ, ਰਹਾਉ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਬੇਕਾਰ ਸੰਸੇ ਮਹਿ, ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਜਿਸ ਹੈ ਜਗਾਏ ਪਿਆਵੈ ਇਹੋ ਰਸ, ਅਕਥ ਕਥਾ ਤਿਨ ਜਾਨੀ, ਜਾ ਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਬਿਹਾਜ ਹੋ, ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨ ਹੈ ਬਸੇਰਾ, ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵਹੁ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਹੋਏ ਗੋ ਫੇਰਾ।

सुख मांगे मोको कर संतन की तूर अंतर जामी पुरख बिदाते शरदा मन की पूर नानक दास इह सुख मांगे मोको कर संतन की तूरे।

लोक पवन गुरु पानी पिता माता तरत मखत दिवस रात दोई दाई दाया खेले सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया वाचे धर्म गदोर करमी आपो अपनी के नेड़े के दो जिने नाम ते आया गए।

0: जी। दर्शन प्यासी दिन सिरा चितवो अंधनीत, खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत।
1: पहले पहरे फुलड़ा फल पी।

अमृत छाड़ बिख बिख खाय, माया मोह परम पै पूले, सुत दारा स्यो प्रीत लगा। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाय। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो सरना। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा महला चौथा संत कर चौथा। तन तन श्री गुरु रामदास साहिब जियो।

0: विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जीव विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद आगे फिरे जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साद लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद सालाह विस्माद उजड़ विस्माद राह विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजूर वेख विडाण रहा विस्माद नानक बुजन पूरे भाग महला पहला
1: कुदरत दिसै कुदरत सुनिया कुदरत भाव सुख सार कुदरत पाता लिया काशी कुदरत सर्वाकार कुदरत वेद पुराण कतेबा कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर प्यार कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान अवमान कुदरत पौन पानी वैसंतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत तू कादर करता पाकी नाही पाक नानक हुक्मे अंदर वेखै वरत

0: दीपा लोआ मंडला खंडा अमर भंडा हा अंडज जेरज उत्पजा सा खाणी सेत जा हा सोमित जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जंती उपाय कै संभाले सबना हम जिन करते करुणा किया चिंता पे करनी ताह सो करता चिंता करे जिन उपाया जग तिस जो हारी स्वस्थ तिस तिस दी बाणिया भग नानक सचे नाम बिन क्या टिका क्या तग महला पहला
1: लख नेकियां चंगियां लख पुन्ना परवान लख तपू प्रतीथा सहजोग विवान लख सुरतन संग्राम रण में छोटे प्राण लख सुरती लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखिया वन जान नानक मति मिथ्या कर्म सच्चा निशान।

थोड़ी सच्चा साहिब एक तू जिन सचो सच वरताया जिस तू दे तिस मिले सहायता तिन्नी सच कमाया सतगुर मिलिए सच पाया जिन कहे।

0: कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप, कूड़ माड़ी, कूड़ बैसनहार, कूड़ सुना, कूड़ रूपा, कूड़ पन्नहार, कूड़ काया, कूड़ कपड़, कूड़ रूपा पार, कूड़ मियाँ, कूड़ बीबी, खप होए खार, कूड़ कूड़े ने हो लगा विसरिया करतार, किसनान की चै दोस्ती सब जग चलन हार, कूड़ मिठा, कूड़ माखे, कूड़ बे पूर, नानक बखाने बेनती तुद बाज कूड़ो कूड़ महला पहला।
1: सच ता पर जानिए जर दे सच्चा होए, कूड़ की मल उतरे तन करे हच्छा तोए, सच ता पर जानिए जा सच तरे प्या, नाउ सुन मंद ऐसी है ता पाए मुख द्वार। सच ता पर जानिए जा जुगत जाने जियो, धरत काया सार के विच दे करता बियो, सच ता पर जानिए जा सिख सच्ची ले, दया जाने जी की किच पुन दान करे, सच ता पर जानिए जा आत्म तीर्थ करे निवास, सत गुरु नु पुछ के बैरह करे निवास, सच सबना होए दारू पाप कड़े तोय, नानक वखाणे बेनती

करम जिना को तुद पाया था तिनी खसम ते आया इना जनता के वास की सुनाई तुद वे की जग तू पाया इक नानू तू मेला एक आपो तू दुखवाया गुर कृपा ते जाने जिसे तू दा बुझाया सहजे ही सच समाया सहजे ही

0: दुख दारु सुख रोग भया जा सुखताम न होई। तू करता करना मैं नाही जाहो करी ना होई। बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत ना जाई लख्या रहाओ। जात मह जो जोत मह जाता अकल कला भरपूर रहया। तू सच्चा साहिब सिफत सवाले जिन कीती सो पार पया। कहो नानक करते किया बातां जो किश करना सो कर रहया। महला दूजा
1: जोग शब्दन ज्ञान शब्दन वेद शब्दन ब्राह्मण है। खत्री शब्दन सूर शब्दन सूदर शब्दन पुराग करता है। सर्व शब्दन एक शब्दन जे को जाड़े पेयो नानक ताका दास है। सोई निरंजन देव महला दूजा।
0: एक कृष्णं सर्व देवा देव देवा तय आत्मा आत्मा बास देवस्य जे को जाने पेयो नानक ताका दास है। सोई निरंजन देव महला पहला।
1: कुंभे बद्दा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए।

संसार अगम सागर तुल्हा हर नाम गुरु मुख पाया, जग जन्म मरण भगा ए आई है प्रतीत, प्रतीत है आई जिन जन के तिन को पदवी उच्च पई। तज माया मोह लोभ अर लालच काम क्रोध की बिरथा गई। अवलोक्या ब्रह्म परम सब छुटकिया दिव्य दृष्ट कारण करनं सतगुर गुरसेव

तिन तरयो समुंदर रुद्र खिन एक में जल हर बिंब जुगत जग रचा कुंडलनी सुरजी सत संगत परमानंद गुरु।

0: तेरा सब सदका,
1: नानक नाम निरंजन जान्यो कीनी भगत प्रेम लिव लाई, ताते अंगद अंग संग पयो सायर, तिन शब्द सुरत की नीव रखाई, गुर अमरदास की अकथ कथा है, एक जी कछ कही ना जाई, सोडी शिष्ट सकल तारन को, अब गुर राम दास को मिली बड़ाई।
0: सतगुर खेमा ताणिया जुग जूत समाणे, अन पोने जा नाम टेक जित भगत अघाणे, गुर नानक अंगद अमर भगत हर संग समाणे, एहो राज जोग गुर रामदास तुमहू रस जाने।
2: जनक सोए जिन जानिया उन मन रथ धरिया, सत संतोख समाचरे अपरा सर परिया, अकथ कथा अमरापुरी जिस दे सो पावै, एहो जनक राज गुर रामदास तुझ ही बन आवै।
1: जगत

कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुपाय दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसामदे नूर अरसों कुरसों चटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पातशाह सिर शांदै शाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे साह सज्जन सच्चा पातशाह सिर शांदै शाह जिस पास बैठिया सोहिया

जे कोई निंद करे हर जन की, अपना गुण न गवावे, हर जन राम नाम गुण गावे, जे कोई निंद करे हर जन की, अपना गुण न गवावे, रहाउ जो किश करे सो आपे स्वामी, हर आपे कार कमावे, हर आपे ही मत देवे स्वामी, हर आपे बोल बुलावे, हर आपे पंच तत्त विस्थारा, विच धातु पंच आप पावे, जन नानक सतगुर मेले आपे, हर आपे झगर चुकावे, हर आपे पंच तत्त विस्थारा, विच धातु पंच आप पावे, जन नानक सतगुर मेले आपे, हर आपे झगर चुकावे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। बैराड़ी महला चौथा, हर जन राम नाम गुण गावे, जे कोई निंद करे हर जन की, अपना

0: दया कृपा संतोख सूत जत गंढी सतवट एहो जनेऊ जी का खैता पांडे घत ना एहो टुटे ना मन लगे ना एहो जले न जाए धन समान स्नान का जुगल चले पाए चौकड़ मुल अनाया बह चौकै पाया सिखा कं चढ़ाइया गुर ब्राह्मण किया ओह मुआ हो चढ़ पया बेतगा गया।
1: महला पहला लख जोरियां लख जारियां लख कुड़ियां लख गा लख ठगियां पहनामियां रात दिन सी नाल तग कपाह हो कटिए बामन वटिया कोहे बकरा रिन खाया सबको आखे पाए होए प्राण छुटिए पी फिर पाइए हो नानक तग ना टूटई जे तग होवे जोर। महला पहला
0: नाय मने पतु उपजे साला ही सच सूत दरगे अंदर पाई तग ना टूट सबूत। महला पहला
1: तग ना इंद्री तग ना नारी भलके थुक पवे निदाड़ी तग ना पैरी तग ना हाथी तग ना जेवा तग ना अखी वे तगा पे वत्ते वड़ धागे अवरा कत लै पहाड़ करे वे आहो कड़ कागल दसे राहू सुन वेखो लोका विडाण

बोलरे वाहे गुरु। एक ओंकार वाहे गुरु जी के फतेह श्री भगौती जी सहाय। वार श्री भगौती जी के पातशाह दसवें प्रथम भगौती सिमरकै गुरु नानक ले त्याय। फिर अंगद गौर ते अमरदास रामदास होई सहाय। अर्जन हर गोविंद नौ सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जैस डिठे सब दुख जाय। तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निध आवे ताय। सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहेब जी। सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोता श्री गुरु ग्रंथ साहेब जी दे पाठ। दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। पंजा प्यारियां सोह साहिबजादियां जालियां मुकतियां हठियां जापियां तापियां जिन्ना नाम जपिया वंड छगिया। देग चलाई तेग वाही देख के अन डिठ कीता। तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। जिन्ना सिंघा सिंघणियां ने धर्म हेत शीस दिते बंद बंद कटाए। खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चराए गए। गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया। सिखी केसा सवासा नाल निभाही तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। पंजा तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। चित आवे चित आवन।

0: गौ ब्राह्मण को कर लाभ हो गोबर तरण न जाई तोती टिका तै जप माली धान मलेशा खाई अंतर पूजा पढ़े कते बा संयम तुरका पाई छोड़ी ले पाखंडा नाम ले जहे तरंदा महला पहला
1: मानस खाने करे निवास श्री भगवान तिन गलता तिन कर ब्राह्मण पूरे ना दो ना पियावे हो साध कूड़ी रास कूड़ा वापार कूड़ बोल करे आहा शर्म तरम कड़े रा दूर नानक कूड़ रहे आ भरपूर मथे टिका तेर धोती का खाई हर छुरी जगत का साई नील वस्त्र पहर होवे प्रवान मलेस्तान ले पूजे पुराण अपाख्या का कुठा बकरा काना चौके पर किसे ना जाना देखे चौका कड्डी का ऊपर आए बैठे कुड़िया मत पिटा वे मत पिटा वन साडा फिटा तन फिटा फेड करेन मन जूठे चुली प्रेम कहो नानक सच त्याई है सच हो वह ता सच पाई पौड़ी।